मुख लेंगे साहित्यी लॉयड रेगो अनी रोशन क्रास्ता, संगीत विनिल वेगस, गायले ले जावना साथ प्रजुत डेसा, गीत चिंतनान एताई।